0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: एयो जो एम्रो यून मार अंगे यूचे अंगे रंगे यूको

0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो